याज्ञा करम है सर्व बलदारियो अनाद्य अनंत दिव्यनी मोक्षांपन मातावन कान्यमार्य तुमांगे गतहा प्राणय उबिगे श्री कुमार अटोबिन वासस्थानयक वनलेस इस्प्रीतु सांतु अरमीन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतु सिहिकरनो तुमियगे दयाबर आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरुवलिन हा अनवर्त मरनेन गलवीम सलसो मेनव मेकी दे अपगे स्वामियो जेसु क्रिसु सुहांसे उदिसाम अपट लेबेवा आमेन।